नमस्कार एडलेड, मैं हूँ आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता और आप सुन रहे 5 VBI 103.1 पर आकाशवाणी एडलेड। और आज यादों की बारात में मैं एक ऐसी जबरदस्त एनर्जेटिक ट्रिब्यूट लेकर आई हूँ। जी हाँ, याहू याहू कहने वाले किंग शमी कपूर जी के नाम। शमी कपूर जी का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में हुआ था। वो थे लेजेंडरी पृथ्वीराज कपूर के बेटे और कपूर फैमिली के एक सुपर स्टाइलिस्ट स्टार। उन्होंने बॉलीवुड में एक नई एनर्जी लाई, चाहे वो डांस हो, रोमांस हो, वो एक चार्म, एक करिश्मा था और वही उनका अंदाज बन गया। अब आप सुनेंगे ये प्यारा सा नगमा तुम सा नहीं देखा, उसी मूवी का टाइटल ट्रैक जिसमें हीरोइन अमिता नजर आई है। किसी ने खूब कहा है, जिंदगी एक सफर है, सुहाना है, और इस गीत में भी ये लोग टांगे पे बैठ के ये गीत गुनगुना रहे हैं। ओनली ऑन 5 VBI आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

चलिए दोस्तों, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और यादों की बारात में आज हम बात कर रहे हैं शमी कपूर की। तो अगर उनकी करियर की बात करें तो जो पहली मूवी इन्होंने की वो थी जीवन ज्योति, जो कि 1953 में आई थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखाया। फिर अगली मूवी उनकी आई जिनसे उन्हें सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली एज अ स्टाइलिश प्ले बॉय, एज अ चॉकलेट बॉय, एज अ डांसर, वो थी तुमसा नहीं देखा, जो कि 1957 में आई थी, जिसका गीत अभी अभी आपने सुना। उसके बाद दिल दे के देखो 1959, अगेन उसमें बहुत पॉपुलर हुए, और फिर 1961 में आई उनकी मूवी जंगली अगेंस्ट सायरा बानो, जो कि ब्लॉकबस्टर रोमांटिक हिट रही। चलिए उसी मूवी का गीत आपके हवाले करते हैं, एहसान तेरा होगा मुझ पर। दोस्तों, अगर शमी कपूर जी फास्ट नंबर पे आप सभी को एंटरटेन करते हैं डांस करके, तो स्लो नंबर पे रो के आप सभी के आंखों में भी आंसू ले आते हैं। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ओनली ऑन 5 VPI, आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यादों की बारात में शमी कपूर जी की। अगर शमी कपूर जी की लव लाइफ की बात करें तो गीता बाली के साथ इनकी पहली मुलाकात होती है मूवी मिस कोको कोला के दौरान। उसके बाद ये दोनों प्यार में पड़ते हैं। मूवी रंगीन रातें जब आई थी तब शमी कपूर जी एक लीडिंग एक्टर थे इस मूवी में, और गीता बाली भी कोई रोल कर रही थी इस मूवी में, और दोनों इस कदर रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं कि छुप के मंदिर में जाके शादी करते हैं। इसके बाद इन दोनों को प्यारे प्यारे दो बच्चे होते हैं, और ज़िंदगी जो है ये आपको कभी भी दगा दे सकती है, और शमी कपूर जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। गीता बाली ने उनका साथ छोड़ा 1965 में जब वो सिर्फ 35 साल की थी। किसी बीमारी के चलते ये इनका साथ छोड़ देती है। इसके बाद शमी कपूर जी की जो एनर्जी, जो चार्म, जो करिश्मा था वो धीरे धीरे फेड होने लगता है। आइए सुनते हैं करिश्मा टैगोर के साथ उनकी मूवी का ये गीत, ये चांद सा रोशन चेहरा, जो मूवी कश्मीर की कली आई थी उस मूवी का ये गीत है। किसी ने खूब कहा है कि चांद से चेहरे पे जुल्फों का पहरा, ये हुस्न भी क्या कमाल करता है। सुनते हैं ओनली ऑन 5 VBI आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

बहुत सारे लिसनर्स सुन रहे हैं आप वेबसाइट्स के जरिए, ऐप्स के जरिए, और मुंबई में बैठकर के जय, माया, किरण, अनुपमा, सुजाता, हर्षिता और राजेश्वरी इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। आप समय निकाल के हमेशा इस प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो अगली हीरोइन मैंने शमी कपूर के अगेंस्ट ली है वो है आशा पारेख। और ऐसा कहा जाता है कि शमी कपूर जी जब डांस परफॉर्मेंस देती थे किसी भी गाने के लिए, जो एनर्जी वो डालते थे, वो किसी भी हीरोइन के लिए उस एनर्जी को मैच करना एक चैलेंज होता था। और ठीक ये जो गीत आपके सामने प्ले होने वाला है, ओ हसीना जुल्फों वाली, इस गीत में जो एनर्जी शमी कपूर जी ने दिखाई है, उस एनर्जी को केवल हेलन ही मैच कर सकती थी। जी हाँ, हेलन के साथ जो इनकी जुगलबंदी चली इस गीत में, आप सबने भी विटनेस की है। सो तीसरी मंजिल मूवी का ये गीत, जिसमें नजर आई है आशा पारेख, पर डांस परफॉर्मेंस हो रहा है शमी कपूर और हेलन का। सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, ओनली ऑन 5 EBI, आपकी प्यारी रेडियो जंकी निकिता।

किसी ने खूब कहा है, दिल की बातें जुबां तक लाना मुश्किल है। भाई दिल की बातें जुबां तक लाना मुश्किल है, पर इश्क छुपाना और निभाना उतना ही मुश्किल है। शमी कपूर जी सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की जमाने में भी इंटरेस्ट दिखाते थे। वो बॉलीवुड के पहले इंटरनेट सेवी स्टार में से एक थे। उनका देहांत 14 अगस्त 2011 को हुआ, लेकिन उनकी एनर्जी, उनका चार्म, उनका डांस, उनका रोमांस आज भी जिंदा है। हर खुशी मिलती नहीं जिंदगी में, पर जो मिलती है उसे शमी जैसे जीना चाहिए। मेरी और आपकी मुलाकात जल्द होगी। आपसे ले रही हूँ इजाजत, जाते जाते वैजंती माला और शमी कपूर का ये गीत मूवी प्रिंस से, बदन पे सितारे, हमारे याहू किंग के लिए ये एनर्जी वाला गीत बजना लाजमी है। सुनते हैं बदन पे सितारे, ओनली ऑन 5 EBI, आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

0: पीजे सरकार।
1: कहने था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।